तो सुखितो हो तो परमेन्द्र महाराजा सा परम राजनी सिद्धि किचं सिद्धि कमं।